आपने कम प्याल चाहिया और नया वो यावे कुत कर गाता हूँ दे गुड़ाक वेलाव किन्दं केनो वाने कुत कर गान ना केना कतरो वेला टीशर्ट एम्ब्रॉयडर कर गान ना तैनाकलो हाँ नियमाए हमो में कुत कर गान ना

अनलिमिटेड रेडियो फन ने का डीजे फन ने का सेट वेना टैग दिनन्ना नेट एफएम डीजे नाइट अदर रैंड नोवेटा.

सुबह मंदा रम रहा फेवा या हंद में क्या नाद अने मंदा ऐता दिरत माते क्या कहते सराई मनोली अन्ना था मंदा मंदा ने कमेंट आई ये ठीक दावसे डे मामा साथ रहेंगे ठिया अधिरत माते का इमाते या क्यों हुए ओया ओया व विश्वास कराना या क्या बो मंदा कर कर मांगी ना मंगे जीविते प्रश्न दिए ना अकाहरी एट मांगुला के टेका हाँगे ने अनमाला गाना ही आदरे थामते तने माई मांग पाबू